याज्ञा करामः। सर्वबलधारियो अनाति अनंतो दिव्येनि मोक्षसंपन्न मातावन कन्यमरियतुमन्गे गतः प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहांसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।

याज्ञाकरं सर्वबलधारयो अनाति अनन्तो दिव्येनि मोक्षाम्पन्न मातावन कन्यमरियतुमन्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुर वलिन हा अनवरत मरनेन गलवेम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लबेवा।